0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: से न तमाशा करे हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई और क्या समझ के भला तूर पर कलीम ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: न चुकाईंदो गालिन जो मकसद शिकस्त या पोएते हटन न, पर कौम जे हकन जी हासिलात आहे।

अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थे शहीदन के भेटा पेश कर लाइ कौमी असेंबली ए सिंध असेंबली में यकरा ठहराव मंजूर। सिंध असेंबली ठहराव से गालाइंदे वे वजीर मुराद अली शाह ऑपरेशन बुनियादुल महसूस में पाक फौज के बहादुरी से भेटा पेश कया तो पाकिस्तानी शाहीन दुश्मन जा जंग में अठ जहाज किराया। भारत के गुरूर राफेल के भी मिट्टी जो ढेर बनाया। भारत जा 77 का ड्रोन से किराया वह भारत शहरी आबादी के निशानो बनाया जैसा आम शहरी शहीद थे। पाकिस्तान भारत खिलाफ रुगो 54 मिनट ऑपरेशन किया शिकस्त डी। कौम भी दुश्मन खिलाफ मुतहद हुई। भारत जंगबंदी लाय अमरीकी सदर के चयो हो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चिटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कदर उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी छी। 2024 बारे इम्तिहान के तकरारी नतीजन दौरान साल 2025 के चिटाभेटी इम्तिहान लाए स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जून से वठण जो भी ऐलान। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पैंजे पधराई में चाहे तो फेल उम्मीदवार शिकायत लाय राबतो कन एहतजाज का पासो कन बी सूरत में कार्रवाई थी। फेल उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान लाय तैयारी करण घुर्जे। एसपीएससी गडियल चिटाभेटी इम्तिहान 2024 के तकरारी बढ़ल नतीजन दौरान गडियल चिटाभेटी इम्तिहान 2025 लाय स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई 2026 से वठण जो ऐलान भी करे छोड़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माँ खादो गरम करी थी बेटा।
3: बुध थकल थकल पी लगी घड़ी खरीता
2: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात माँ तक खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
4: मेरी थकल को भी तेरे
3: तू हाल हुए माँ अच्छा तू हाल तू

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कीअं खाईंदमि
2: तेरा ख़्याल मेरी ज़िंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बहितरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार इन्हीअ जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
7: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: कैडेट कॉलेज जगबाबाद। अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
3: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राब्ता
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: इंटरव्यू मेरिनो ऐसा ट्रंप चयो तो अमेरिका जिया ईरान में बदतर पसंद चरिया मानू मौजूद आयन तेरन असा अञा भी मुआहिदो मुमकिन है। उम्मीद क्या तो ईरान की सुठी कैद सामू इंदी, ईरान से मुकम्मल फतेह जरूर हासिल कदी, उन वाले से को भी दबाव ना है। ईरान जंग खत्म थी, तेल कीमतू घटी वेंद। विच ओवर में ईरान जो कामयाबियों किथे है, दुनिया में नए निजाम जो रस्तो खोले रो नारबरन समुंड जो रुगो ईरान है पाड़ेसरन जो हक है। अपने हुरमत की इस्तेमाल दुश्मन के मिलियल बुनियादन जो खात्मो जरूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कमनाई विच ओवर है अपने हुरमत बाबत 10 स्ट्रेटेजिक तजवीजू जारी कर छो। ईरानी सदर मसूद पशांत तेहरान दुश्मन आरो कदे भी कंध न झुकाइंदो, गाडियन जो मकसद शिकस्त या पोते हटण न पर कौम जे हकन जी हासिलात है। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद सदर में मुलाकात, नायब वजीर आजम इसाकदार, स्पीकर अयाज सादिक, करू वजीर मोहसिन नकवी ए बया भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में मुल्क की मजमू सूरत हाल, अफगानिस्तान बाबत मामलन ए खिते तब्दील सूरत हाल से गाल क्यू। महकहक के शहीदन ए पाक फौज के भेटा पेश कई वही। सदर आसिफ जरदारी विच ओवर चिकनाण सप्लाई चेन मुतासर बावजूद अवाम के रिलीफ फराहम किया वे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तियाज नतीजन खिलाफ जांच करने उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे छी। 2024 वाले इम्तिहान के तकरारी नतीजन दौरान साल 2025 चटाभेटी इम्तिहान लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जून से वरण जो ऐलान। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाहिद फेल उम्मीदवार शिकायत लाइ राबो कन जांच का पासो कन, बी सूरत में कार्रवाई थी। फेल उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान लाइ तैयारी करण घुर्जे। एसपीएस कडियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 की तकरारी बढ़ल नतीजन दौरान कडियल चटाभेटी इम्तिहान 2025 लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई 2026 वसण जो ऐलान किया वो।

0: जे काथे का ज्यादती थी का गलत गाल थी उनजो अदालू थे मुझो पुट अकबर अब्बास फॉरन रिटर्न भी है हाईएस्ट मार्क्स जो एस रिटन इंटरव्यू में पास न थे यह खबर तो कें को नहीं था नासिर शाह के पुट के जे पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी न मिली
1: के फोरम्स हूं जिथे उन शिकायत बुधी वही
2: ये मुझे ना खबर को इन्वॉल्वमेंट आए बर्दाश्त न कर
3: अगर इस तरह की बात रेज हुई है तो इसका जरूर जो है डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तह तक पहुंचेगा और दिखेगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो है उनके साथ कोई भी गलत हो।
4: सिंध हुकूमत इनके जांच कराईंदी जाहरी गल आवाम भी यो चाहे तो फ्री एंड इम्पार्शल अगर इंक्वायरी थी तो उनमें सचो साबित थी वो जी शे गलत होंगी तो
5: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से पैंजा नवाजी और मेरठ लिदार जो इल्जाम सिंधी चूंडल नुमाइंदा जो मौकब भी सामू अची वो केटीएन न्यूज से गालाइंदे सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह हुकूमत मेरठ से यकीन रखे थी मेरठ लिदार बाबत कें वट शायदों तो पेश कई वन मुझो पुट भी लिखित कमीशन जो इम्तिहान पास कर हो इंटरव्यू में फेल थो गरीबन जहा बार भी कमीशन में पास थे उनको किथे भी जिक्र न पो थिये हुकूमती धुर्ज में वजीर ए एमपीएस जो रुगो इल्जाम न लगन घुर्जे इदारा मौजूद आन शायद ही अचान घुर्जन वो वजीर मुराद अली शाह मामले की जांच कराई रो है पास थन्दड़ खुश ए फेल थन्दड़ मायूस थन्दा इल्जाम न लगन घुर्जन

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
4: फातिए मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नसलन ताई हलन दिया है. ही पेगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Michael Habib.
2: GAFM Network पर KTN News.
3: इंतजामन ज़रिए सहूलतूं ॾिनियूं वयूं हक़ीक़तनि जी उपतड़कती इलाक़ाई इस्तेहाम में अमुन लाइ जारी कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइनि थियूं. समूरनि ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फ्री वञे थो. असांजी तजवीज़नि जो जवाब ॾियण में ॼाणी वाणी देर करे रहियो आहे. उहे जवाब न त 10 मिंटनि में अची पए सघिया. ईरान जूं नयूं तजवीज़ूं चरियाप वारियूं आहिनि. कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं. अमरीकी सदर ट्रम्प अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾिनो. सदर ट्रम्प चयो त अमरीका जीअं ईरान में मतदल पसंद में चरिया माण्हू मौजूद आहिनि. तेहरान सां अञा बि मुआदो मुमकिन आहे. उमीद कयां थो त ईरान जी सुठी क़यादत साम्हूं ईंदी. ईरान ते मुकमल फतह. ईरान जंग. चोॾहं नुक़्ता जी तजवीज़ुनि में मौजूद ईरानी अवाम जे हक़ क़बूल करण खां सवाइ ॿियो रस्तो नाहे. ईरानी पार्लियामेंट जुमिले में देर अमरीका खे टैक्स ॾियण लाइ ॾुखियाई जो सबबु बणजंदी. ईरान जे एटमी पावर प्रोग्राम ते को बि समझौतो न थींदो. जोहरी टेक्नोलॉजी जी ॻाल्हियुनि जो हिसो नाहे. खैरपुर खां सखर ऐं 5 खैरपुर खां राणीपुर रोड ते हलंदियूं. खैरपुर बस टर्मिनल ते इंतज़ाम मुकमल. सीनियर वज़ीर शजीद मेमण एमएनए नफीसा शाह सां गॾिजी इफ़्तिताह कंदो. सूबाई वज़ीर जा महताब डेर ते कातलाणे हमले केस में शहरियार शर पुट समय देर की गलत शर ऐं जहांगीर शर सुप्रीम कोर्ट मां ज़मानत मिलण बाद सिविल कोर्ट में पेश थिया. शहरियार शर चयो आहे त फर्द जुर्म लागू थी चुको आहे. असांखे अदलिया ते मुकमल एतमाद ऐं इंसाफ़ ज़रूर मिलंदो. पुलिस नौजर साहब ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण तहत पाण लाश अस्पताल मुंतकिल कयो. खैरपुर भरिसां चोर 6 थंभनि मां 11,000 वोल्ट जूं तारूं चोरी करे विया. केतिरनि ई ॻोठनि जी बिजली बंदि. ॻोठाणनि जो चवण आहे त बिजली बंदि हुअण सबबि ज़िंदगी तकलीफ़ में गुज़रे पई. इंतज़ामिया नोटिस वठे बिजली बहाल कराए.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन का गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम. लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम.
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: माइकल हबीब.
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA 91.6 सिंध जो आवाज. ॿुधंदा रहो.

0: काम में कामयाब होते
1: प्यार।
0: इसके अलावा मेरी आवाज़ जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दुनियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या घरों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बगम, अहलन वसहलन, मरहबा बखेर आगले जी आया नूसफ जसमुल्ला, बोंजोर चाओ नीहाओ एंड वाकी गुलजार है।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने, बोलने को, बुलवाने को, सारी बात देखिए प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम। और इस भी हम क्या करें।

0: बच्चे ना तो
1: पाप वगैरह ये कहते हैं भाई, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, बस भेज दिया
0: कुछ हिसाब से रखा करे उन्होंने मुझे ये सिखा भी आने के बाद आती है यहाँ से जाने के बाद नहीं आती यहाँ पे सब डिस्टर्ब करते हैं मुझे और यहाँ से जाने के बाद कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता
1: सर मेरे नाम करो
0: ओके

0: हुए और मारा हुआ मेरी जज्बात का एहतराम करो मेरी जात का काम करो काम करो।
1: ओके किसी को डेडिकेट करना है?
2: किसी को
1: ये सवाल मैं पूछना छोड़ दूँ आपसे?
2: अच्छी बात है, यही कहता हूँ।
1: चले जबरदस्त। अच्छा, और कुछ? हाँ जी।
2: अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो थैंक्स कहना था मिसेज अली को, छत से आना जो कर दिया। मैंने कहा चलो सही है, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो फायदा होता है, अच्छा लगता है।
1: और सर दर्द ने भी की थी वैसे आपकी तारीफ?
2: हाँ हाँ, सर दर्द के लिए वो हमेशा मेरे लिए दो लाइनें लेकर आती हैं, आज मैं उनके लिए दो लाइनें लेकर आया हूँ।
1: हाँ जी, इरशाद।
2: किस कदर शुक्रिया अदा करूँ आपका, किस कदर शुक्रिया अदा करूँ आपका, अल्फाज नहीं मिलते, आवाज मेरी इंतजाम ना होते।
1: हाँ भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल,
2: पहले तो हमारी जिंदगी में आई और इन्होंने जो है ना इतना अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगता है। अल्लाह करे सब खुश रहें।
1: थैंक यू अपना बहुत। आपका गाना, अच्छा इस गाने के शुरू में ये जो यहाँ से

0: बनाओ परफेक्ट ब्यूटी। लुक ब्यूटी आपको खूबसूरती का हकीक।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा
2: माद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: Giju, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं डबल ईट के ऊपर नेक्स्ट कॉल. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अली मोहम्मद भाई, किधर थे आप? कहाँ पे थे?
1: इधर आपके शहर में, करीबी शहर में.
0: मेरे शहर में, करीबी शहर में. ओके, कॉल लगाई नहीं थी या वैसे लगी नहीं थी?
1: नहीं, लगती नहीं थी. बहुत ट्राई कर रही, बात तो बहुत नंबर मशरूम जा रहा था, बहुत दिनों के बाद ट्राई कर.
0: अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलें फिर इसी बात पे कुछ सुना दें. अच्छा सा.
1: अच्छा, बिल्कुल सुनाता हूँ. तमाम उम्र तुझे

0: ओके नहीं दक्षिण का ओके
1: और जो मैंने प्यार किया
0: ठीक है
1: जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता हार हार के ध्यान नहीं मिलता है जो पास इसे है जो पास इसे संभाल कर रखना खो कर वो कभी दोबारा नहीं मिलता मौला आपको सलामत रखे सब सुनने वालों को अली मोहम्मद बंबरों की तरफ से बहुत सलाम और दुआएं
0: ओके जी थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ विश कर रही हूँ और ये नाहिद अख्तर नूर जहाँ का आ रहा है और कोई सैड सॉन्ग ही आ रहा है चलो मैं इसको दोबारा सर्च करती हूँ तब तक हम एक और कॉल लेते हैं एंड 03000113 कर रहे हैं पहले एक सॉन्ग प्ले करेंगे एंड एक्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल सुनेंगे इंजॉय करेंगे आगे चलेंगे

ऐसा है कि आप लोग मुझे कह के कमरे के कोने में काली कंघी निकाली ये कहना है, जल्दी जल्दी कहना है, इसकी प्रैक्टिस कर। कोने में काली कंघी निकाली है ना, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। एंड द हेयर कट फिलहाल सही सुनते जाएंगे, न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। सिंध खे कंहिं बि सूरत में विरिहाइण न ॾींदासीं। खैरपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर सदीर इनाम महमूद त जीडीए खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे, मुक़ाबले जो माहौल ठाहिणु मज़बूत थींदी ऐं चूंडूं वधीक शफ़ाफ़ बणजंदियूं।

0: कराची शहर जे मुख्य इलाकनि में टे ॼणा बल्दियावारी इलाक बाईपास ते एल पी जी गैस कंपनी वेझो फायरिंग, नौजवान गुलाबपुट यूसफ कतल, न्यू सब्जी मंडी वेझो हिंगोरा गोट वटि फायरिंग में सईदुल्ला कतल जो हिकु ज़ख़्मी थियो। सूबाई वज़ीर जाम शहरपुट समेत देरकी जी अदालत में पेश, अॻूणो एम पी ए शरियात शहर जहांगीर शहर सुप्रीम कोर्ट मां ज़मानत मिलण बाद सिविल कोर्ट में पेश थिया। शरियात शहर चयो आहे त मुकमल एतमाद ऐं इंसाफ़ ज़रूर मिलंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, रहो जीए एफएम 91.6।
3: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न जेल, जेका ॾे कुदरती निखार, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ हेमे डायमंड ग्लो ॾींहुं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक।

आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FM88 सखर। इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।

0: और शाम ने कमरे के कोने से काली कंघी निकाल दी। आशा ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
1: और कुछ कहेंगे?
0: बाजी सॉन्ग सुना दे अच्छा सा कोई।
1: कौन सा?
0: जो भी है वो जो पाकिस्तान कौन है जो सुना दे।
1: चले मैं आती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।

कि जी ये हम कुछ प्ले करना चाह रहे हैं, प्ले कुछ और हो रहा है, बट नो इश्यू हम प्ले करेंगे एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय हसन एंड रोशन. सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का.
4: जेकर है तवाखे मेदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार है आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक. और इसके अलावा जी हमारा सेगमेंट जो अभी तकरीबन कुछ देर पहले हुआ, दैट इज बोलो तो माने. तो बोलो तो माने में किसने टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा बोला है वो हम बताएंगे आपको. उससे पहले कुछ कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. नियाज हुसैन मलक हमें सुन रहे हैं, इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, अब्दुल रज्जाक हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से और कहते हैं शो जबरदस्त है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है. मुझे क्या पता, आप बताएंगे ना मुझे कि जबरदस्त है या नहीं. इसके अलावा हर्षचंद राय कोहली हमें सुन रहे हैं, जिंदगी में हमेशा ऐसे इंसान बने जो किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि दिल जीतने का हुनर हर किसी को नसीब नहीं होता. वाओ, वेरी वेल सेड.

इसी के साथ एक और सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है एंड सॉन्ग इज बाय जिनकी शादी उनकी शादी ओएसटी सॉन्ग सुनेंगे एंजॉय करेंगे आज चल आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है

0: अच्छा अहा जो चेहरो
1: तफरी से रिश्ता जोड़ो सुनते
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
0: छा अहां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो हाणे वक़्तु आहे चमकण जेका ॾे चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूस करियो हैमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो हैमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: अगेंस्ट मां किशोर कमेंट कर रहे हैं, तेरा होकर देख लिया है मैंने, रोकर देख लिया है। इश्क में पागल होने से कुछ नहीं होता, मैंने पागल होकर देख लिया है। वेरी गुड, मतलब अकल आ गई है। ओके, वेरी नाइस। ओके, इसकी कॉल लग।
1: हेलो, वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी जी, खैरियत है? कौन बात कर रहे हैं भाई, नाम बताइएगा।
1: गुलाम लगारी से।
0: गुलाम लगारी से कौन?
1: गाजी खान रिंद।
0: ओके जी, गाजी खान रिंद भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुनाओ, खैर कह रहे थे?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताएं कि लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात है कि साथ एक्टिंग करो, वालदेन का खिदमत करो, वालदेन का ख्याल करो, और छोटों बच्चों के ख्याल करो, ये अच्छी बात है। और देखिए ये काम किया करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का इबादत करो, ये अच्छी बात है।
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
1: और फिर कह रहे थे नंबर ही नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से लगा।
0: कॉल है ना हमारी शो में, तो इस वजह से सबकी यही शिकायत है कि कॉल नहीं लगती।
1: हाँ, कॉल नहीं लगती।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल।
0: चले, हमने बहुत सारा ख्याल रखे। मैं प्ले कर रही हूँ।

0: देने वाला सन का डायमंड राइस किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
1: गिफ्ट पास्ता और गिफ्ट रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खाने।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
6: सुनी

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ टेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा कर लाल शहबाज
1: खत्ते की बनी है आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

ये जना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के कितने सारे फायदे हैं जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा वाला हसीन बना देते हैं।

क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा शानदार। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर आप ये सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे अपने होने का आएंगे। यहाँ ये कि अगर जो हमारे लिसनर्स है वो हमें सुन रहे हैं तो जनाब कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ आप लोगों को बताते चलें आप क्या तरीके का। तो आज दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप जीए लारकाना FM 88.8 के पेज के ऊपर आ जाएंगे। और जीए लारकाना FM 88.8 का पेज अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आप आकर क्या करेंगे जी, आप जैसे ही आते हैं पेज पर तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर लोग ऐसे जो कि हमें मैसेज भी नहीं कर सकते हैं, कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोग्राम में कॉल्स भी ली जाती हैं। और कॉलिंग वाला जो सेगमेंट होता है वो 2 बजे नंबर

0: और क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं या अभी तक नहीं? तो मैं यहाँ पर जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाती हूँ और फिर जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: It's 1:30 PM. This time check by
2: ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कर जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन आई कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
5: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ।
1: 30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Jade maa panjo khyal rakhandi aahe, ta sehat nasalan tai halandi aahe. Hi pegam Kash Foundation ay Canadian Government je tarfa pesh kayo vayo.
6: Khush khabri, Sindh jo mashhoor

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, सो अज तव्हां जो कॉल्स त बिल्कुल वठंदासीं, पर मां इहो सोचां पई त तव्हां जेके कॉलर्स मूंसां कॉल ते कनेक्ट थींदा, कॉल कंदा, या फिर तव्हां जेके रिस कयो था या फिर कॉमेंट कयो था, तव्हां सभु मूंखे इहो ॿुधायो त हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि खेड़ सां प्रोग्राम कंदे, मतिलबु इलाही ॾींहं थी, तव्हां मूंखे अॼु इहो ॿुधायो छा को प्रोडक्ट वरितो आहे या सिर्फ़ अञा ताईं प्रोग्राम ॿुधो पियो? अछो त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके न वेठी ईंदा आहिनि, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके वरी इंतज़ार कंदा आहिनि, थोरो इंतज़ार न बल्कि इलाही सारो इंतज़ार कंदा आहिनि। तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हां अञा ताईं जेको आहे प्रोडक्ट वरिता आहिनि या फिर सिर्फ़ तव्हां सोचो था त मूंखे वठणु घुर्जनि आहियो था, इहो बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा। पसंदि आ रहे, बहुत शुक्रिया। अदनान नूर हमारे साथ मौजूद आहिनि, वेलकम जी आपको भी, और जतिन बिष्ट हमारे साथ।

0: जी
1: ओके
0: जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच बिस्मा असि प्रोग्राम में कॉल कई माशाल्लाह सुनी छोकरी हुई रहमतपुर का असो प्रोग्राम बुझन पाया वाह वाह वाह वाह गानो एकड़ो मौजूद है गानन जो फरमाइ शुक्र थी वयो है मैं सोचा पई तो गाना भी साथ साथ लगाइंदा अचूं जी तमाचा गाना भी गड गड हलंदा अचूं आई साईं वडे के चवां त ही वारो गानो डाढो भलो गानो आहे।

कहाँ प्रोग्राम सुन रहे हैं आप व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए और साथ साथ आपके मैसेजेस हैं। तो जी ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम टीचर, क्या हाल है आपके और आपकी टीम के, आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। आप हमारे साथ ही लाड़काना से इमरान अली बिरोही, इमरान भाई आपको वेलकम हो गया। ये मीरपुर खास से हमारे साथ अब्दुल्ला महर के थे, अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूँ। वाह वाह वाह वाह, यूज क्यों यूज क्यों, अल्लाह रखियो मीरपुर। और हजार खान कोरकानी हमारे साथ ही राम लाड़काना, अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा मुस्कान जी, ये शायरी दिल से पढ़िएगा। हाजिर हाजिर, दिल से पढ़ू था छा था जो शायरी में, हिकड़ो मिनट रुको। ओके जी, लिखते हैं कि ये दिल के रिश्ते बेवफा हो नहीं सकते, आप भले हमें भुला कर सो जाएं, हम आपको याद किए बगैर सो नहीं सकते। मंजूर सकी रानी का सॉन्ग लगाइएगा, थैंक्स। ओके मैं कोशिश करूंगी, आपका गाना सुनेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और कश्यप के लिए आप ही मुझे आज निगत का गाना तो सुनाइएगा, आज मेरी कॉल लगेगी या नहीं, नंबर तो बहुत ट्राई करती हूँ पर जब मेरी कॉल करें आप पिक न बाबा, यू मुझे बस समझे तमाशा छोकरी नुकाली जब भी लगी मेरी आवाज नसी बचे गाला। और कहती हैं आप इसे डो जी जी लगे तो तमाम भी मुंह मांगे निगत नाजा फेन आयो, सो बिल्कुल निगत वारो गानो तां बुधो गाने से गुरु गुड़ असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी वटूं था तो वरी जल्दी मोटी बजंदा तां नींदासी तमाम सफाई ते बैठा हो जो कारी भी न वंजो मोटा थी। व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ए पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप सा गड वाइट H Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan

किया है सिंधी दिल। ये मटियल 1.6 जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क।

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz. This program is brought to you by
1: Jadeh Maa Panjo Khyal Rakhan Diya Hai, Ta Sehat Nasalan Tahin Halan Diya Hai. Hi Pegam Kash Foundation and Canadian Government Jitarfaan Pesh Kaya Vayo.
2: ओके सर, आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल सर, प्रोग्राम व्हाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं. प्रोग्राम में बातें होती हैं, प्रोग्राम में फन होता है, प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. बिल्कुल सर, यहाँ पर आप लोगों ने जो है अगर इस्तेमाल करने हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आप ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एश में ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है. सोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपको सोप मिल रहा है. फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फेस वॉश मिल रहा है. अगर आप लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी. ऐसे ही बहुत सारे व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन जब हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानब आते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है. बिल्कुल जनाब, ये दो प्रोडक्ट्स और ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार शुदा है. ये जनाब इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: त तव्हांजे एरिया में प्रोडक्ट मिलंदा जंहिंजे बारे में ॿुधायां थी?
1: इहो मिले कोन थो भटारो।
0: अला इहो रक़म सही न आहे न ॾिस।
1: पर तव्हां जेको नंबर ॿुधायो न वरी निमाइंदे जो पोइ कुझु राब्तो कंदासीं शाम जो बाद
0: में। जी जी, इन माण्हू सां ज़रूरु ॻाल्हाइजो, तव्हांजे एरिया में जल्दी अवेलेबल कराए छॾींदा प्रोडक्ट।
1: हा जी जी आंटी।
0: चलो प्यारा भाउ, तव्हां सां ॻाल्हाए इलाही सुठो लॻो ऐं कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा। जी जी, थोरो ॻाए ॾेखारियो त मां सर्च करे वठां।
1: ओ मुझी जाना, ओ मुझा दिलबर।
0: चलो ठीक है, मां ॾिसां थी अगरि मूंखे। जी जी, मिलियो त तव्हांजे लाइ।
1: करूं बिस्मिल्लाह।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, प्रोग्राम में कॉल कई। माशाल्लाह इलाही सुठो कॉलर हुयो। और बस कॉलियूं एसि ताईं वठंदासीं, हाणे कॉलर्स खे जेको आहे थोरो रेस्ट करायूं था। हीअ हिकिड़ी कॉल वठी ॾिसूं, अलाए छो दिलि चवे थी। सो हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क इशू। ओके, सो बस हाणे कॉलर जेके आहिनि थोरो तव्हां रेस्ट कयो, वरी इनशाला सुभाणे तव्हांजी कॉल्स वठंदासीं। प्रोग्राम आहे जनाब असांजो पंहिंजो सोणो सोणो प्रोग्राम, जंहिंमें तव्हांखे सोणे सोणे थियण जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं। वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो आहे। वाइट एश प्रोडक्ट्स आहिनि, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि, तव्हांजी ख़ूबसूरती आहे ऐं जनाब असां आहियूं।

अच्छा कश्यप कहती हैं कि आप ही सिड्डू आए शो में और कश्यप ना आए ये हो नहीं सकता, आप ही निगर का गाना लगाइएगा अच्छा सा, और आप ही मेरी कजन है महनू, रुबाब, किंजा और मेरी सिस्टर है अलीजा, फिजा और माविजा, आपका बहुत शौक से शो सुनती हैं हर रोज, और कहती हैं कि इन सबको दिल से वेलकम करें, ये सब आपको सलाम दे रही है। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी परियों को दिल से वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का।

ओके जी, इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम, आपको भी हम वेलकम करते। कहती माँ घोर थिया मुझे प्यारी दिलबर दोस्त। अच्छा, कहती हैं वाइट एश ब्यूटी क्रीम बायोकोन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल कर रही हैं, आप इसी वजह से ये कह रही हैं। और उसके अलावा ये भाई कोई पूछ रहे हैं कि आपका फेसबुक पेज क्या है, तो हमारा फेसबुक पेज है जी लाड़काना FM 88.8। सर्च कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा कश्यप कहती है मुखे साड़ तो थे तो मुझे काल छोड़ने नहीं लगे। साड़ ना क्यों बाबा। ओके जी, उनका अलावा तवाजा कॉमेंट्स आहिन, तवाजा कुछ कॉमेंट्स पढ़ंदा सी लगे पे तो जेके मानू कॉमेंट कन प्या वेचारे चन प्या सुखी वया से बादी ता सा जो कॉमेंट न था पढ़ो। और ये किशोर भाई कहते हैं कि अधिक कराची में सदर टावर मार्केट में क्रीम पहुंचायो तो असा भी काल ते सच सच गालाए सको। चले बिल्कुल, सदर में असा अवेलेबल कराई था क्रीम, सब अवेलेबल कराई ना सही है।

बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना। एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि सना मारवी की आवाज में होने वाला है मेरे ख्याल में। अगर नहीं तो बताइए जरा कि ये कौन सी जुबान में गाना गाना है। इस गाने को भी सुनेंगे और साथ साथ जी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उर्स लगारी भाई लाजवाब शो। थैंक यू वेरी मच।

अच्छा खालिद हमारे साथ मौजूद है, इस जन्म में तो आपकी कॉल नहीं लगेगी। अच्छा मेहताब अली इंटर हमारे साथ मौजूद है, जरूर अच्छा हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी अमानुल्ला टगर भाई हमें सुन रहे हैं, अमानुल्ला भाई आपको भी वेलकम। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच।

जो साफ, क्योंकि आप लोगों से सोचेंगे कि आप तो लोगों का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप सब लोगों का टीज के ब्यूटी शो आप लोगों का मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम भी आप लोगों का अपना है तो आप जरूर से बता दिया करें कि आप हमारे साथ साथ और वाइट प्रोडक्ट है ना, ये सारे आप इस्तेमाल करके देखिएगा। उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही शानदार भेजाइए और दुनिया को बता देंगे भाईजान आप भी हंसी। मुलाकात मुझे यह है पांजो ओ इनो माजरत गया पर सुमोकलानी।

0: सब एक पेज पर हैं इस वक्त, फेडरल गवर्नमेंट, काउंसिलमेंट, फुल फॉर्म सब एक पेज पर है, कोई आपस में कोई डिफरेंसेस कहीं पे नहीं है। ये फॉर्म गैप तक, सोशल मीडिया गैप तक जो है, ये सवाल के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक जब मकामी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया, आनी नहीं आनी ये पता नहीं है, आप इस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए, सर मिशन की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28 ही आए या 2800 तकनी में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है, ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
1: वफाक ऐसे हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिक पेज ते आहिनि। 28 तरवीं बचे या 29 सिंध खे केर बि ऐं कॾहिं बि विरहाए नथो सघे। कैरफुर में पीपल्स बस सर्विस जे इफ़्तिताह वारी तक़रीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमन चयो त जीडीए खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे, सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक ऐं सुठो कम करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वञे, सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे। शहजील इनाम मेमन खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह बि कयो। सिंध असेंबली सूबे में गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ यकराए सां मंज़ूर करे वरितो। सूबे में गैस जी लोड शेडिंग बंदि करण जो मुतालबो। एमपीए मोहम्मद अवेस पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत एमके मेंबर्स बे हिमायत कई। गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ बि ठहराउ यकराए मंज़ूर कयो वियो। बिल्किस मुख़्तार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर हुननि ते अमल नथो थिए। सूबे वज़ीर रज़ा पेजूअ चयो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत कयूं था। सिंध में कारोकारी जा जरगा छो थियनि था? तंज़ीला कमराणी चयो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो क़तल क़बूलण जोॻो नाहे। पंजाब में औरतुनि खे हिरासा कंदड़नि
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जी ए लतीफ
2: सिंध जो नेटवर्क किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
3: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करोला।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हीअर नई काशीद में आहे नकी कड़ो
1: लई सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करोगे, जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 कार हिसाब की तरह बड़ा ख्वाब।
2: 578 शहरों में बैंक अल अबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचों से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलरू सुगर खां भी दाधा नियर नहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क GFM सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू दुदा चीज में आहे
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो
1: सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश कानदार इनाम जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और
0: सभी शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस मिनटों में पहुंचता है
1: और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अलबीत
3: डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम रोजानो सुबह 9:05 सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: दिया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है जीएफएम 88 नेटवर्क जीएफएम 88 नेटवर्क।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब,
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जंग में शमूलियत UAE जी शमूलियत जी अमेरिका खामोशी से आजिया कई, जवाब में ईरान भी UAE और कुवैत पे हमला किया। पाकिस्तान ईरानी जहाजन की मौजूदगी बाबत CBC न्यूज की रिपोर्ट के गुमराह कदर करार रही रद्द कर छो, पर रही खाते मौजूद इस्लामाबाद गालियन लाए अमेरिका ईरान जा केतरा जहाज पाकिस्तान पौता, जिन जो मकसद सिफारती अमले सिक्योरिटी टीमन ए गालियन वाले अमल के आसान बनाए हो। कुछ जहाज ए अमलो गालियन के बे दौर के नजर में रखन्दे पाकिस्तान रहा, बो दौर अजाबता शुरू ना थो पर आला सतह सिफारती राबता जारी आन। ईरानी परदेही वजीर जो पाकिस्तानी दौरों भी मौजूदा इंतजामी ए लॉजिस्टिक सहूलत जरिए मुमकिन थो हो। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो, जो कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरतहाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना। ख्याल से बदल बयानी जो मकसद इलाकई इस्तेकाम ए अमन वाली कोशिश के नुकसान पहुंचाण है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ मुल्की एक्सपोर्ट बाबत इजलास, वज़ीर आज़म के नंढे ए विचोले कारोबार ए सनअतन के फरत हुकूमत अमली जोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त एक्सपोर्ट से बदल सनअत ए मुल्की तरक्की जा हदफ हासिल करण अंटर आन। हुकूमत जो समूरो दे वाद के सहूलतू दियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाद जो कारण पारन ए सनअत लाए रिथाबंदी कई वञे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी FM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अम्मा, एडी सुबह का चा मिलियो?
3: चा मिलियो पुत्र।

0: हिक ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदी असांखे
1: पता लॻाता हूं
2: असांजो पाणी साफ़ न आहे तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे
0: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
2: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो
3: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तन खां बचा ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम
1: 91.6।
2: सिंध की हो तो एफएम 88 नेटवर्क, ये एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ना हथ करण जे पेश करण जो नोटिस वरतो, जांच जी हिदायत। ईरान खिलाफ जंग रखजे या ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कजे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेझन सलाहकारन सां मुशावरत शुरू करे छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां जंगबंदी वेंटीलेटर ते बीठल आहे, तेहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक करण बाद फिरी वञे थो, जेको क़बूल न कंदासीं। ईरानी अवाम जे हक़नि खे न मञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझ बि न हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ़ चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठाह न कंदो। तेहरान जी ॾिनल 14 तजवीज़नि जो ॿियो को बि मुतबादिल नाहे। ईरान जे पार्लियामानी कमीशन जे तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई चयो आहे त ॿीहर हमिलो थियो त तेहरान यूरेनियम जो रचाव 90% ताईं वधाए छॾींदो।

0: पाकिस्तान ईरानी जहाजनि जी मौजूदगी बाबति सीबीसी न्यूज़ जी रिपोर्ट खे गुमराह कंदड़ करार ॾेई रद्द करे छॾियो। परडे॒ही खाते मूजिब इस्लामाबाद ॻाल्हि लाइ अमरीका ऐं ईरान जा केतिराई जहाज़ पाकिस्तान पहुता, जिन जो मक़सदु सफ़ारती अमले, सिक्योरिटी टीमनि ऐं ॻाल्हियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो। कुझु जहाज़ ऐं अमलो ॻाल्हियुनि जी बेदौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में ई मौजूद रहिया। ॿियो दौर अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो, पर आला सतही सफ़ारती राब्ता जारी आहिनि। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदा इंतज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतुनि ज़रिए मुमकिन थियो हो। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज़ बि जंगबंदी दौरान आयो हो, जंहिं जो कंहिं बि क़िस्म जी फ़ौजी हंगामी सूरतहाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक नाहे। ख़्यालनि ते ॿधल बयानीअ जो मक़सदु इलाक़ाई इस्तेहकाम ऐं अमुन वारियुनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइण आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ नार मुल्कनि मां भाण जी सप्लाई चेन मुतासिर थियण सबबि एशियाई मुल्कनि मां मुतबादल फरामी जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आला सतही इजलास दौरान भाण जे अथरादू कोट ऐं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त लाॻापियल वज़ारतूं ऐं इदारा भाण जी फरामी जी मुसलसल निगरानी कनि ऐं रबी तोड़े ख़रीफ़ लाइ जझे मक़दार में भाण जा ज़खीरा यकीनी बणाया वञनि। ग़िज़ाई तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण लाइ ज़रई शोबे जूं ज़रूरतूं पूरियूं करणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे।
1: फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, पूरी कौम सब एक पेज पर, कोई आपस में कोई डिफरेंस कहीं पे नहीं है। ये फॉर्म के हद तक, सोशल मीडिया के हद तक जो है, ये खबरें आ रही होती हैं। आप लोग क्योंकि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। वफाकी हुकूमत में कोई मसूदा शेयर नहीं किया, आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप उसमें सिंध की तकसीम भी लेकर आ गए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28 में आए या 2800 तब्दील में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है, ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
0: वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अचे या 29, सिंध खे केर बि ऐं कॾहिं बि विराए नथो सघे। खैरपुर में पीपुल्स बस सर्विस जे इफ़्तिताह वारी तकरीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन चयो त GDA खे फाल करण सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध में पीपुल्स पार्टीअ जो केर बि मुक़ाबलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक ऐं सुठो कम करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपुल्स पार्टीअ ते तनक़ीद कई पई वञे, सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे। शर्जील मेमन खैरपुर में पीपुल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: लगता है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं काची।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

देखिए ड्रामा सीरियल ना तुम जानो ना हम, पीर से जुम्मा रात 7 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज़
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज़ भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल पामाल बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
0: डीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे डीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कराची पुलिस अॼु ॾिनल प्रोटोकॉल सिंध पुलिस जे भिटे मयार खे बि ज़ाहिर करे छॾियो। कुझु ॾींहं अॻु कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां पहुतल औरत मार्च जे अॻवाननि शीमा करमाणी ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तारी दौरान तज़लील जो निशानो बणायो वियो हो। साॻे ई पुलिस अॼु मंशियात फिरोश औरत खे प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र आई।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ताज़नि नतीजनि ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा। साल 2024 जी जारी कयल चटाभेटी इम्तिहाननि जा नतीजा मुअतल करण जो मुतालबो। इम्तिहानी अमल मार्किंग ऐं मेरिट लिस्ट जी शफ़ाफ़ जांच लाइ पंजाब जी फॉरेंसिक लैब खां जांच कराइण जी घुर। करप्शन ऐं मेरिट जी रफ़्तार साबित थियण ते कार्रवाई जो मुतालबो। ठहराउ एमक्यूएम जे एमपीए मोहम्मद बास महफूब पारां असेंबली जे सेक्रेटरी वटि जमा करायो वियो।
0: सिंध असेंबली सूबे में गैस जी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सूबे में गैस जी लोडशेडिंग बंदि करण जो मुतालबो। एमपीए मोहम्मद अवेस पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत ऐं एमक्यूएम मेंबर्स बि हिमायत कई। गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ बि ठहराउ मंज़ूर। बल्कीस मुख़्तार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए। सूबाई वज़ीर अज़रा फज़ल पेचूहो जो चवणो हो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत कयूं था। सिंध में कारोकारी जा जरगा छो थियनि था? तंज़ीला कमराणी जो चवणु हो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो क़तल क़बूलण जोॻो न आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सर मस्त
1: ये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर नई का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा पी जाठा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अगर फिरदौस बरूए जमी अस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस। ए कश्मीर जन्नत हज़ीर।